वेरी रस खलाक हम कशवरों आलोगे काशित बलवे निखमित विज्जे आदि बोलोगे इस तशितव्यस एकन नूर विज्जे आलोगे वेरी रस खलाक मियाला इब रस खलांग यकोफि दुआएकुं मियाला अबाज वेरी अकम गानुआ में।

0: हांगार
1: अंगार दो हम इंद्र कोरी एकार गड़ फनर है रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम पार गड़ तेरी हूँ
0: हांगार
2: हम एकड़ दिवे ही राज्य चढ़ूं
3: राज्य राज्य बेर के फनानों के एम में फाहुगे मसक्के तका दायरा के शौकुएरी खबर तक आएगो
4: फिल्मी दुनिये
5: सिनेमा तकुं सीरीज तकुं आदि फिल्म तकुं
6: निकमिंग आने के कन्ये कुनुआन
7: अनु माफ करे कमना
3: फिल्मी फन्नानुना गुळुहुरी खबर त
8: ओटीटी प्लेटफॉर्म तवगे सीरीज तका कुरु फिल्म तकुगे वाहकता
9: दिवे राज्य गडु मुनफुही फिल्म के दायरा या फिल्मी एकेकी खबर त गेनिस दिनुमा
4: फिल्मी दुनिये होनीर दुहुगे मेंदुरुकुरी 11 कडी फनरा
3: एंगहास 441 नुए किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
4: हमें कनी दिवे राज्य गडु

रसखलाक हम कशवरों आलोगे काशित बलवे निखमित विज्जे आदि बोलोगे इस तशितव्यस एकन नूर विज्जे आलोगे वेरी रसखलाक मियाला इब रसखलांग यकोफि दुआएकुं मियाला अबाज वेरी अकम गानुआ में।

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরবা ফাবে আসালুল্লাহ আল জান্নাতা ওয়া আউযু বিহি মিনান নার মানে স্বর্গ দেব এবং এদি মিয়ালা দন্নবানি হাম একানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আশ আদি নরকাগে আযাব সালাম বুমং এদি দন্নবানি বেস হাম একানি একালাং গাশ
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಾಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಾಡು ತಿಂಗಡಿ ಎತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನೆ ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರುನ ಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: Medkine şu Kore medeli mehar garin egar gari 23 minit hinga meni migari ga tebihra jigarun Kore medeli medkine şu me hama komme budu do hikere egar bare kure genda şu eti befunge do hitirum ge kankama gule go to mashwara kola khayal badal kolma me şu Kore medeli mirege şu ge sama me maseke kure ne bare ku beavje kavak da kalve to mehar bu gule fa assalamu alaikum
1: alaikum salam pagu
0: Kehine arsham.
1: Paraz angalo.
0: Tini muni langaliye. Koba konka me oti arsham mire kuriya.
1: Kuriya ten oti me soni muni mani dun kama. Bara jaha paradu ahala.
0: Ehem. De med kine mi diyei meyadu.
1: Meyadu amu diyei paraz angala diyei. Meyadu.
0: Barabar gadiyan kam nukure vege hame ekames mar jassala kavsinuche maada maya fas kura kavsinuche
1: iraz kura vite hame ekal kam meeda kono e
0: deha darangalu do heke mem meeda ki do hire meeda vissaratti kola
1: ama de tere ko vissara vehila den hama rit vela ekal gota kam mulane
0: barab vissar do he vesinga danta do
1: ये कि तुम्हारा बारा विस्तार से मैं देखा तो है ना
0: मैं मभी गुड दो निम्न मैं दस्ती बुनी सती के अन सती के हम दो मैं ती ती कहीं पार्टा लो माने आने का सिंगे
1: मैं गबोल करूँ कमेंट वाक एक को तो क्या नो दाने का तो यहाँ को मैं तो दिन इरात करे भी तो हम एक आल दो है
0: Me tu mi shoga bari wang oti mai kota kuri takan tangani ka.
1: Oh no, bari wang tiyas no. Then anin handane business show mati na then mire hama egara jara free vi gadi ang hama show jasa lafa live jasa sini mahama wadeli wadeli hama then PS me mese tek koldi hama.
0: Nangalo nangalo hema me tu tihe diwas rangala. Kanta kuri wahak muni rangala. Do? Mi mahinga amila nafsa ekka lava jahama amiha lava ko lava ekka menne gulu vei are tangkule ki alama
1: ei ane ane konna me va tera na ti va ilava ei va tera na ti va ne to zuan ko vi ilava ei
0: ei alira mizge lava do
1: alira mizge lava nunca nenge
0: ei alira mizge lava no
1: Padre ti dane to zuana kavi eda tur film ko kya sen lave
0: eda tur me kol ge hivane lo ho dale ve gnu he
1: eh me jane lo ho ke me ja ja zubi asaru ga din na ne lave kare kus ko fa
0: ei mukhtar ge
1: ela ve amire
0: mukhtar ge jaz bi asaru ga do ela engen ne kya la
1: ela engen kya la
0: अरे जस सालमा हिंगा बकुड़ो कुड़ो को
1: ओके ताज़बिया सर गदा फरीना या मलुगे रानी जानु दी मिहार दोस मडु मडुने बिंदे लानी ताज़बिया सर गदा फरीना या मलुगे रानी जानु दी मिहार दोस मडु मडुने बिंदे लानी
0: दिगुला वे दर्शन गला ऐह मतलब जहाँ मादें एरुं तब कुरिया दाने दो ऐमा अमिला नफ्सा वाला खास से दो मिला वा
1: अमिला वाला खास तो हमारा फेवरेट लावे कुडेरन सोरे फेवरेट लावे वरना फेवरेट
0: ऐमा आदि मिला वा ने का इतना मॉडिफाई भी मैं इतना फेवरेट हुए जो दो
1: मिला वा के देवाशन में सब मिवाशन में तो कुछ क्या पे मिवाशन में स्वारा जी
0: मिला वा ज्यादा नहीं क्या वकीला अरे बाजे रखे देंगे
1: अरे बाजे रे फक्कर
0: निकल